काम का मैं भी माहिर हूँ, वो गायब है मैं हाजिर हूँ। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में, हाँ।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: तुम खुद भी किसी से कम तो नहीं, वो कोई एटम बम तो नहीं। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में।
1: अरे करते

काम का मैं भी माहिर हूँ, वो गायब है मैं हाजिर हूँ। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में, हाँ।

0: सारे गामा
1: सारे गामा सारे गामा।
0: अच्छा तुम ये तो गाओ, तेरे नैना
1: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया।

आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: चलो घंटी बज के चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा रुकना
1: अच्छा लगा ना।
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।
1: अच्छा जी ओ टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: उधार रख के जा तो रहा है लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता?

जब एक पिंचर हो गया दूसरा लगा दिया। अरे वो दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं, लेकिन तू क्या समझेगा प्यार क्या होता है।

0: फूलवती, आज टमाटर शुरू होने से पहले ही
1: रहने दो काका, रहने दो, मैं बोलता हूँ।
2: फूलवती, काका ये कहना चाहते हैं कि आज तमाशा शुरू करने से पहले ही तूने खत्म कर दिया।
3: नहीं काका जी, आज का तमाशा तो अब शुरू होने वाला है।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम, तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?